भाव। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडे आई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा किया वडे आईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। पुत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारहि ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जान के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मेल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंतु उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिर जन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा।
हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बेन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजयोग मेल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सर वरड़ै पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया। पंकज मोह पाग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हौ जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।
अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाउ जाप ताप।

सिख उबारू असिख संगरू दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न है आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा।

सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखाने। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ।

मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार उह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया ए वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पा

सत्संग जी। बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पाचे दसवीं प्रितम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण त्याय सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पाची के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दर अंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीबन वाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड चख्या दही चलाई ते वाही दे के डेढ़ किया ना प्यार से त्यारा नहीं कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सी दिता बांध बांध कटवाए खोपरिया लवाइया चलखड़िया से चढ़े आर्मे चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तेना नहीं कमाई जाते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्ता थोड़ा गुरुद्वार होता अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेता है चित आवण का सद का सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब तरचरियात दे की फतेह ब्रत की पहच पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटन धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के रखे आप वाहे गुरु। गुरु की वाह पंथ सदा सहाई दियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब दुर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जे पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार दस्या संभाल दा अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताले रास। हे गरीब नवाज जी आप जी के चंद कमला सरदार सिंह साहब ने बख्श की दतार दियो आदि जाना पितर गुरबाणी सुखमी साहब संपूर्ण पाठ दतार इस वे संध्या समा जान के आप जाना सोधदार रह रास साहब पाठ की दिन कृपा करो होइया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतों के हिरदे सारी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप जी दख्शिया दातों में पितर कड़ाप साधित देगा तैयार कर हर दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव दे रखा बख्शिश करो दीप इमरवाज आप दिन बख्शिया दातों जो लगना तुर सवार प्रबंध करनी तार कृपा करो आप जाना सेवा करे सारे टहरी सिंह सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरना सेवा की भावना बख्शो की पालता करो गरीब नवाज कृपा करो अमृत वेले तो लैके दरते सब संगतों की हाजरी दर प्रवान करो कड़ियां लिख लाओ संगतों का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी तन तन बिना तार पिता जी आप चरण कामना दरदास तार पिता जी काका गुरजीत सिंह जी तंदुरुस्त सुख शांति चाटी करा वास्ते बेनती करते हैं दतार जी भाई गुरुदेव सिंह दोस्तों डर आप चरण पेटा के प्रवान करो दतार बख्शिश करो मेहर करो मेहर प्यार काका गुरजीत सिंह सिरत रखो काका गुरजीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्म देश कौन आग्ञा कर बख्शो दतार बच्चे ने गुरसिखी दाज बख्शी करके सदा चाटी करा बख्शो उच्चिया गरीब राज पढ़ाइया की दाज बख्शो सोहनिया जाबा की दाज बख्शो तरक्की याबता जिंदगी बख्श करने की बालता करो जी गरीब राज भाई गुरुदेव सिंह के सारे परिवार में तंदुरुस्त सुख शांति चढ़ी कलाकार की कमाइया सफल करो दादी लाजपत रखो जी भाई कृपा करो खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वागत प्यार की बख्शिश करके सत रोज दाल बख्शो चरणा ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्शे पालता करो जी गरीब नवाज दूर दराज घर बैठी लाइव कथा की सरण करियां सारी संगत हाजरियां करो घड़ियां लेके लाओ तथा राम ने कृपा की संगत ने बख्शे संगतान चरणा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया भेटा कारी चरणा प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सफल करो कार्य वाद्य वार साफ संगत शुभकामना सपना पूरी करो जी तार मेहनत कर आओ सेवा प्रवान करो पूरा वाही बख्शो पितर गुरान बख्श कर ब्रह्म अज की शाम की कथा कीर्त रमता वास्ते आग्ञा बख्शो रेंदे का सुहार के चरणा धनवाद मनाओ शुद्ध पितृ सेवा रानी की वादा करो दतार सही प्यारे मेरे जिला मेरा आपका नाम जता ना
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤ੍ਰਿਵੈਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ।

0: सुनहार सत्याकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दास तेरे की बेनती, रिद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नासो। हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखाय बेखो खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरणाई।

संसार अंदर हर मनुख जो भी अपनी रसना तो आखदा है जा जो विचारधारा बनी हुंदी है जुबानी तौर ते उस विचारधारा दे नाल जुड़दा है जा उसका खंडन करदा है जा उसका मंडन करदा है। खंडन दा अर्थ है भी किसी विचारधारा नाल मैं नहीं सहमत, मंडन दा अर्थ है मन लेना भी मैं ठीक है, ये जो विचारधारा चलती है मैं इनू मनदा। पर ऐसे लोकां दी गिनती बहुत ज्यादा होवेगी संसार अंदर, मनन वालियां दी जुबानी तौर ते ते खंडन करन वालियां दी, विरोध करन वालियां दी जुबानी तौर ते। किसी भी विषय उत्ते आपां उदाहरण लईए, मान लो आपां इह गल करिए भी रब है, इहदे उत्ते दुनिया दो विचारां दे नाल चलदी है। एक लोक ओह ने बहुतांत जिहड़े कहिंदे ने असीं रब दी होंद ते विश्वास करदे आ, आस्तिकता रखते ने, अपनी आस्था रखते ने। एक फिरका वो है उन्हां दी गिनती घट है, विरोधी ने जिहड़े कहिंदे सी नास्तक हाँ भी रब दी होंद नूं नहीं मनदे। धर्म की गल कर ली, कुछ कहणगे धर्म का होना बड़ा जरूरी है, धर्मी होना चाहिए, कुछ कहणगे धर्म की जरूरत नहीं। विरोध विचार दे नाल जुड़ना या विचार नाल ना जुड़ना, यह मनुख दे संसार दे अंदर ज्यादातर लोग इस तरह दे ने। सिद्धा कह लिए हां पक्खी या ना पक्खी, कोई भी गल साडियां अखां सामने आएगी कुछ देखांगे असीं जां उहदे वल हो जांगे, उहनूं कहा गया भी यह बंदा हां पक्खी है साडे वल है, जां ना पक्खी भी यह गल नूं नहीं मानदा यह विरोधी है। हकीकत अंदर सिर्फ जुबानी तौर ते जां इउं कह देना भी बुद्धि दे तल ते हां पक्खी जां ना पक्खी बन के कोई मनुख किसी एक विचारधारा दे नाल खलो जांदा है, संसारी तौर ते उह लगदा है कि ए इस गल नूं मनन वाला है, इस विचारधारा नाल जुड़िया होया, इस विचारधारा नाल सहमत है। पर हकीकत यह है जिन्ना चिर उहदा किरदार उहदे वर्गा नहीं बन जांदा, उहदे किरदार विच्चों उह गल नहीं झलकदी जिहदी उह गल दे नाल पक्ष दे नाल जुड़िया हुंदा है, उन्ना चिर उहनूं हां पक्खी जां ना पक्खी कहना अणजाण पुणा है। ज्यादातर इंसान भी सिर्फ इथों तक सहमत ने लोग कि मैं जी इस गल नाल सहमत हाँ जां नहीं, दूजा कहिंदा नहीं सहमत, पर किरदार सब दे इक्को जे ने। रब नूं मनन वाले जां रब नूं ना मनन वाले दो धड़ा है, पर जदों असीं लोक उन्हां लोकां दे किरदार नूं वेखांगे किरदार दोवां दे इक्को जे ने। इत्थों लगता है जिहड़े ना पक्खी ने फिर ज्यादा ठीक ने, क्योंकि जिहड़ा कहिंदा मैं रब नूं मनदा वो जे चोरी कर रहा है, यारी कमा रहा है, बुरियाइयां कर रहा है, धोखा कर रहा है, ठगी कर रहा, बुरे कर्म कर रहा है, भय नहीं करता परमात्मा दा, पर उहदी जुबान ते गल है कि मैं रब नूं मनना, मैं आस्तिक हाँ, इहदा मतलब है हां पक्खी है पर किरदार कुछ होर कह रहा है, निश्चा नहीं, विश्वास नहीं अपनी विचारधारा दे उत्ते भी जिस चीज नूं मैं मन रहा, जिस दा मैं धारनी हाँ उस धारणा दे अनुसार मेरा जीवन ही है नहीं। जे कोई कहे भी मैं रब नूं नहीं मनदा ते कोई विपता बन जाए, कोई दुख बन जाए, वो अरदास करे जां वो भय खा के किसी अगमी शक्ति बाबत सोचे, तो इहदा मतलब है भी उन्हें किसी वजद विच आके किसी वर्गलाने विच आकर के कह दिता भी मैं नास्तक हाँ, पर उहदे अंदर कोई पकड़ डर उहनूं किसी पासे प्रेर रहा है, उहदा जीवन उहदी विचारधारा दे नाल उहदा किरदार नहीं चलता। भाव यह है कि जिन्ना चिर साडे अंदर जिस गल नूं असीं अपनी जुबान तों आखदे हां जिन्ना चिर उहदे प्रति साडे अंदर निश्चा नहीं, विश्वास नहीं, उन्ना चिर असीं उस विचारधारा दे नाल सहमत नहीं हुंदे। पर यह बहुत घट लोग इंसान दुनिया विच ऐसे मिलदे ने जिन्हां नूं कथनी ते करनी दा इक किया जांदा है, ज्यादातर लुकाई कथनी ते करनी विच वक्खो वक्ख है। करनी सब दी वक्खो वक्खरी है, कथनी सब दी वक्खो वक्खरी है। कथनी दे अनुसार बहुत कुछ बंदा चंगा चंगा कह देंदा है, वड्डा वड्डा कह देंदा है जी असी बड़े नैतिक हाँ, ईमानदार हाँ, भले हाँ, चंगे हाँ, पर निश्चा अंदर होर तरह का हुंदा है। सो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने अज कई उदाहरण लिया। गुरु साहब ने अज गल पहले श्लोक विच कीती मौत दी, हुण आपां इत्थों वेखीए
तकरीबन लोगों नूं पता है, सानू सब नूं पता है, क्योंकि अखी मौत वेखी है, कन्नी मौत सुनी है, जुबानों पता नहीं किन्निया कु दी मौत दीआं खबरां दित्तीआं, किन्निया कु नूं अपनी जुबान तो दस्या भी फलाना चला गया, अमका भी गया, अमका भी गया। कईआं दीआं खबरां साडे कन्नां विच पैंदीआं ने, कईआं दीआं खबरां असीं अखां नाल पढ़दे देखदे सुणदे आं। इह सारा कुछ मौत बाबत सानू पता है, ते असी एक यकीन भी बनाया, विचारधारा भी है भी दुनिया जा रही है, मौत है, सब ने जाना है। पर पंचम पातशाह जी कहिंदे इह गल तां सारी जबान तो आखदे, किसे नूं भी पुछ लो भी आपां सदा इत्थे रहना है, कोई नहीं कहेगा कि सदा नहीं रहना, क्योंकि पता है हां थोड़े समय का जीवन है, मौत अटल सच्चाई है, सब कोई कह देगा। पर अंदरों इस गल का निश्चय किसे किसे नूं हुंदा है, मरना कोई नहीं चाहता, पता

नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै, छूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी सो बालो रै, साध संग एहो मैं छोरै, जे को जानम मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन कहो प्रभ दर्श प्यासा, नानक थाकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन आपुने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन साम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर तन कौ धन तेरो नाऊ, नथावे कौ नाऊ तेरा थाऊ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गात मेत जानो आपे, अपना संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्त तुम ते होए, नानक अवर न जान सकुए, सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उदम मैं उदम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओहो उत्तम थान, नानक जिहे घट वसै हर नाम, सलोक निर्गुण यार एन्या, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया ते सचीत रख, नानक निभि नाल, अष्टपदी रमैया के गुण, चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अग्न मैं जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर ज्योवन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख्य पया बैठ कौ दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लिहो तव नानक सीजै, जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत भरात मीत बंता संग हसै, जिह प्रसाद पीवै सीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जिह प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना, ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ लेहो प्रभ आपे, आद अंत जो राखन हार, ते स्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निध पावै, ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगह मान, तिसै बिसारै मुगध अजान, सदा सदा ए भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई ते सुपर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर तहब प्रीत भस्म संग होए, अंध कूप मैं पतत बिकराल, नानक काढ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारै करै दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, शपश नाहे कश करै छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन सुहा, गल पाथर कैसे तरै अथा, जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गै लिहो ओड़ निभावै, कहा बुझारत बूझै डोरा, निस कही है तौ समझै पूरा, कहा बिसन पद गावै गूंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, सांग सहाई सो आवे न चीत, जो बैराई ता स्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, कोय न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समग्री तुमरै सूत्र तह।

आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तै बिन मैन कहो क्या धोता। जह निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करन करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कहा को चीन। जब आपन आप उरतारै तौ सगन आप सगन कहा बिचारै। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिसमन बिसम रहे बिसमाद नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशाल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेहो गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहुचा। जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मैं किनो बिसथार। पाप पुन दय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। आपन खेल आप कर देखे खेल संगोचै तौ नानक एक। जय अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप। दोहो पाख का आपे तने उनकी सुभा उनहु बने। आपे कौतुक करे आनंद जोज आपे रास भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक। जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया। दूजा कह दृष्टार अष्टपति आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप विस्थार जात सभावै तां श्रेष्ठ उपाय। अपने पाण लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए। आपन सूत सब जगत परोए। जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार नानक दा सदा बलहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जान आप अंतर जामी रहे व्याप। प्रत पाल जीअन बहु पहांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर की गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार जा कै मन बसया निरंकार। बंधन तोर पय निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करहु आनंद गुण गावह प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उतार। पूरे गुर की पूरी देखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मान तान नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मान ते पाओ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभाए खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे। तिस ते दूर कहा को जाए उबरै रखन हार तिहाए। निर्भउ जपै सगल भउ मिटै।

है, प्रभ कृपा ती प्राणी छोटा है, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटाए अहंकार, तिस जन काओ कोई न पहुचन हार, सर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी, दृष्ट दर्शन पेकत उधरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया सलोक, ज्ञान

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाओ नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तर लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सोन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मेट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभ ही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होते निधान सर्ब इच्छा ताकी पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चलाए जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए।

निज कर दे करिए सब बैरन को आस घरिये पूर्ण हुए हमारी आशा तूर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी यह चुन चुन सत्र हमारे मारी यह आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्चा श्री अस्तु जु करे हो रच्छा राख लिहो मुझे रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जूती यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचनो पजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करक करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब आ करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन से सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महा मूड कच भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लका न जाए पसारा के बिच सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेर से तज की नियुत भुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा होवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाय चंब वा जुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख सुंगरु दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रनकाता जे आस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो ताके ताप तनक मैं हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट चाच व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा कड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दहले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक्षकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को क्षय करता श्री अस्तु जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांचत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर सह सुन तीन कही जय पाद्र सुदिष्ट मेरा वारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कुआंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तो हे बकान्यो दोहरा सगल द्वार

रामकली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दूता गाव हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किचे जिस देह सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसियावा जी शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिस दिया वडियाईया कह नानक सुनहो संतोह सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला चित कर धारिया पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुर जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे सच लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे वेचारिया तुद बात सुमरत कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नो हुर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया हर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिन का मुंह तुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सोजन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर है दा दिशिक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आव हो संत प्यारे हो अकत की करह कहानी कर है कहानी कथ केरी कित दुआरे पाई है तन मन तन सब सौब गुर को हुक्म मन्ने पाई है हुक्म मन्ने हो गुरु की रागाव सच्ची बाणी कह नानक सुनहु संत हो कथे हो कथ कहानी मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिनेत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया मन प्यारिया तू सदा सच संभाले कुटम तुझे दिखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कामू लेना कीचै जितंत पछुताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जानहि जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाने आखै ता विखै सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा अगम है तिरंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज देसु अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुदु पाए कवेक प्रसन आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिक मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खने हो तिखी वाल हो निकेत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यों तू चलावे त्यो चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे त्यवै चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाहे अपने से गुरुद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे त्यवै चलावे एहो सोहिला सब सुहावा
शब्दो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया तिनकै मन वसिया जिन तुर हो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करह गल्ला गली किनै न पाया कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित हुए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सह सो पवित संगत सुभाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसा जीव मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जी हो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जुवै हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै जो बेतालिया कह नानक जिन सतजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुवै हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी कटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जी को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतरात्मा समाले आप चढ़ सदा रह परने गुर बिना वरना जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जी को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थे कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरमावै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाख चरणी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म हुवै हृदय तिना सुमानी पीव हो अमृत सदा रहो हो हर रंग जपे हो सारंग पानी कह नानक सदा गाव हुए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वकाणी हर हर नित कर है रसना कहे आ कछू न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुरु का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ सुमाओ शब्द सेती मन मिलया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सख्त आप उपाए कह करता आपे हुकुम वरताए आवे कह गुरमुख किसै बुझाए तूड़े बंधन हुवै मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै किस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजहु तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते सी जन जागे जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहन विहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है विड़दाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक विड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उदर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करतै खेल रचाया जात सुभाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया लिव चुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया ए माया जितर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हरियाप मुल कह मुल न पाया जाय मुल न पाया जाय किसै विटो रहे लोक विल लाए असा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सौपिया विच हो आप जाए जिसदा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु तेरा जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह कटे हो दिहाड़ी हो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा
कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बनजारा ई रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कित्तै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जिसे आए कह नानक होर अन रसा विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं ज्योत रखी तातू जग मैं आया हर ज्योत रखी तुद विच तातू जग मैं आया हर आपे माता पे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया ज्योत रखी तातू जग मैं आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए शोक दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मह आय कह क्या तुद कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया ए नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख देव हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कह हर बिनवर न कोई कह नानक नेत्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट हुई श्रवण हो मेरे हो साचै सुनै नो पठाए साचै सुनै नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समाणी सचल कविडाणी ताकी गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो सचै सुनै नो पठाए हर जीव गुफांदर रख कै वाचा पवन वजाया वजाया वाजा पाउन नौ द्वारे प्रगट की दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए भावनिक न दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नव निध तिस दांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारा जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन वजाया इहो साचा सुहिला साचै कर गावो गावो तां सुहिला कर साचै जिथै सदा सच ते आवहि सचो ते आवहि जा तुद भावहि गुरमुख जिना बुझावहि इहो सत सभना का कसमै जिस बख्शी सो जन पावहि कह नानक सच सुहिला सचै कर गावहि अनद सुनहो।

कहो तुहारु द्वार बाहि गहे की लाजे अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

माना सिद्ध सैयद पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन।

पंडोही पंड उपजै पंडै बाजना कोई नानक पंडै बहरा एक सच्चा सोए जित मुख सदा।

महला पहला नानक के बोले तर मन का होए फिको फिका सिए फिके फिकी सोए पिता दरगाह सके।

सत्संग दे। बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्ष प्रतिपाच दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन दयावे त्याय सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब साई हुए सहाय दसा पाठी ने पुत्रात्मक स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास दरदा तेंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हटियां जपियां तपियां जिन्हों नाम जपया वन छकिया देख चलाई ते वाही दे के निट किया तेना प्यार सत्यारा नहीं कमाई दा तेंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंह सिंगणिया धर्म हे सी दिता है बंद बंद कटवाए खोपरिया लुआईया चरखियां चले आड़े नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म ने आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तेना की कमाई दा ते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारा हों ते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता वह चित आवण का सदका सर्व सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के मुरबले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिक्की दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे मूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा सहाय दताया जियो गुरुद्वारा ननकाना साहेब पंजा साहेब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया दर्शन दार सेवा समाज सदा अपनी खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास हे गरीब राज जी आप जी ने चरण कामना तरदास बेनती आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पार हो संगत दर्शन दस दे के निहत्त उतार जियो बेहद बाणियों के पाठ हो अजम रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वारद कीर्तन किए ने विद्वान भीर ने अज के हुक्म नवी कथा तैयार की कृपा करो हो भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हृदय इंसान की कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी तैयारी मन बुद्धि बख्शिश करो महाराज मां बख्शिश आपकी कृपा की मेहर की दतार आपकी बख्शिया दत्ता चो लंगर की टुट सवारियां प्रबंध करनी कृपा करो दतार आप ज्यादा सेवा कर रहे सारे तैयारी सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो और सदा इस तरह अपने चरना सेवा की भावना बख्शने पारदा करो गरीब महाराज पुत्र प्राप साहब देगा तैयार कर खातर ने दतार आप बख्शिश करो सजी देगा भोग आप जी लाओ शीत प्रसाद सा संघ की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेचा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो दतार अमृत वेले तों लैके दाते आईयां साफ संगतां हाल जी दर प्रवान करो घड़ियां ने खिलाओ संगतां दा दर ते तिर फुट भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गीम वाह कृपा करो दूर दराज कारण बैठिया दा विखे दा कीते शर्म करियां सारी संगतां हाल जी प्रवान करो घड़ियां ने खिलाओ दतार संगतां दे आपने कृपा कीती उद बख्शन संगतां दे जाना धन्यवाद करदे शुक्रिया अदा करदे आं बेअंत ऑनलाइन गुरु घर नूं गुरु घर सेवा सिंह संगतान गुरु घर सेवा दर सिंह दतार संगत बेहद मैं भेटा करनी चाहना प्रवान करो बच्चा सब दे कमाइया सफल करो कार्ज दतार सब संगत शुभकामना पूरी करो जी गुरु जी वाह कृपा करो सिकम खालसा एकता सुभाग प्यार जी बख्शी करके सत्य दार बख्शो चाना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दुआन फतेह बख्शे प्रार्थना करो जी गुरु जी वाह कृपा करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो वेदर गुनामी बख्शा प्रांत लेडी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आ गया बख्शो रहते कार सवार की चैनल धनबाद बनाओ शुद्ध पुत्र सेवा लाने की बात दतार सही प्यारे मेरे दिन बनाया नाम जता नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में
राज करेगा खालसा आगी रहे ना को ख्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े तो उतरे पा जो शरदा कर सेम दे गुरु पारे उतारन हा खंडा।

सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुबाए, दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसोह कुर सोह चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सूही महला पांजवा।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहा सुख पाला। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी। बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर घर महला सेज सुखाली। एहन सुख

भगत जन हुई हर गुण गाए मिले मल तोई रहाओ ऊंधो कवल सगल संसार है दुर्मत अगन जगत पर जारे सो उबरे गुरु शब्द विचारे प्रिंग पतंग।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बिना सह सगल विकारी, पत मत खोवह नाम विसारी, पार घर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी धंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, ज्यो तन विधवा पर कौ दे, काम दाम चित पर वस से, बिन पिर तृपत न कबहू होए, पढ़ पढ़ पोथी सिमृत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चा

है, हौ मैं खपहै जन्म मर आवहै, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज कर आवहै, राजन जान परम गत पावहै, सच करनी गुर भरम चुकावै।

छोड़ै बिन सतगुर की धीरा। काल जाल जिहवा अर नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन शब्दे मूठे दिन रैनी, हिरदय साच वसै हर नाय। काल न जोहे सकै गुण गाए, काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख

शरण आई। सच घर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोह है रहाओ। अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज घर बैस सहज घर लही है। हर रस माते एहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डुल, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवै अमृत तत् विरुल, सतगुर देखिया दिखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहंग भ्रमणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे भरम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई। गौड़ी महल्ला पहला, राम नाम चित रापै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपहो अभाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहा। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित घट अनहद बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिन कै हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई। सर्व जिया मह एको रवै, मन मुख अहंकारी फिर जूनी पवै। सो बुझै जो सतगुर पाए, हौ मैं मारे गुर सब दे पाए। अर्द उर्द की संद क्यों जाने, अर्द उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण कौ गुण करिय, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिय। सोलह अष्टपदिया गुआरेरी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महल्ला पहला। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, ज्यों गाई को गोयली राखै कर सारा, एह निष पालै राख ले आत्म।

तै रव रहे रख रखन हारा, तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर्धी बिन ज्ञान विचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन सहना अंधियारा। जग बिन सत हम देखेया लोभे अहंकारा, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को अपरंपर सोई, बिन शब्द थिर को नहीं बुझ है सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या फस है जमजाला, डोल बदा कस जेवरी आकाश पताला। गुरमत नाम ना विसरे सहजे पत पाई है, अंतर शब्द निदान है।

भरम न जाए, बंधन न टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जग जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज धुन उपजे।

आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, किस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमूलक गुरमुख पा।

जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रविया चरण निवास।

सुख होए, सतगुर ते नाम पाईए, कर्म मिले प्रभ सोए, सतगुर ते जो मुंह फेरे, ओए भ्रम दे ना टिकन, धरत असमान ना चलई, विच विष्टा पए पचन, एहो जग भरम भुलाया, मोह ठगौली पाए, जिना सतगुर

मैल पाखंड भरम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया, मिल संगति मल लह जाए, मन करहला मेरे प्यारे आ, एक गुर की

गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारे अड़ा जम काल, अंतर निदान मन कर हले, भ्रम पव है बाहर पाल। गुरपुरख पूरा पेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल।

तब एहो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल की रीना, ता तिर मैया घट घट चीना, सहज सुहेला फल मसकीनी, सतगुरे अपने मुहे दान दीनी, रहाओ जब किसको एहो जान सुमंदा, तब सगले इस मिले फंदा, मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल पारी, जब इन करने हार पछाता, तब इस नौ नाही किछ ताता, जब इन अपनो बाध्यो मोहा, आवे जाए सदा जमजोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किछ कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बुझिया, तब ते इस नौ सब किछ सूझिया, जब इहो तावे माया अर्थी, नह तृप्तावे नह तिस लाथी, जब इसते इहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सो जी करी, तो इस घर की कीमत परी, करन करावन सब किछ एक है।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु सवारी साध संग जी, आप जी वडभागी हो गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के नेता प्रति अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। गुरदेव जी सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव साढ़े हिरदयां विच सतगुरु जी विसा देन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुलना हो गईयां हन, आप संगत कृपालु सतगुरु जी बख्शन योग ने। गुरुदेव जी कृपा करन सबना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन, अपनी बाणी बाणी प्रति सतगुरु जी प्रेम प्यार बख्शिश करन जी। भुला चुका दी खिमा समूह संगत दे चरणा विच बेनती है कि अज गुरुद्वारा साहब विखे प्रथम गतका मुकाबला हो रहा है। खालसा स्कूल दे अंदर गतके दियां टीमां आपो अपने जौहर विखा रहियां हन, सो जिन्हां संगतां ने गतके दे जौहर देखने हन ओह खालसा स्कूल विच जा करके उन्हां टीमां दे जौहर वेख सकदे आ। अज सारा दिन ये मुकाबले चलने हन। बेनती है 27 मई तो लैकर के 31 मई तक साडे पास सिख पंथ दे महान कीर्तनी भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले पहुंच रहे हैं, सो आप जिया ने हाजरियां भर के लाही प्राप्त करने हैं जी। भुला चुका दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पंडित जी कीर्तन द्वारा समाप्ति है और यह पूजा चुका लिया आप जितना बख्शिश करनी विद्वान गुणी जन संगत विच उपस्थित हैं तो जाहिर है अज असी अनजान हाँ तो कोशिश है कि होर सुचजे ढंग दे नाल कीर्तन कर सकीए शुद्ध राग दे नाल शुद्ध बाणी दे नाल आप जी नूं कीर्तन सुना सकीए ये मनोरथ है साडा तो आप जी असीस बख्शिश करनी भुला चौका दियां सारे को खिमा बख्शिश कर देनियां तो आप जी फतेह अर्ज करते हां वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

प्यारी साध संगत जीओ, दोनों ही परिवार अते सारे साख संबंधी वड्डे भागां वाले हो, जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी निघी गोद विखे बिठा करके अमृतमय बाणी दे लाहे प्राप्त करन दा सुभाग बख्शिया है। संगा परिवार अते सैणी परिवार वधाइयां दे पात्र ने, जिन्हां दे बच्चे अज गृहस्थ जीवन विच प्रवेश कर रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखन, गृहस्थ जीवन दे सारे सुख बच्चियां दी झोली विच पा के सतगुरु जी नवाजना करन, दोनों परिवारां दी आपस विच बण आवे, इह साडी अरदास बेनती है। आनंद कार्यां दी मर्यादा दे अनुसार दो शब्द 5-7 मिनट विच गायन करके प्रभु जी पासों खिमा दे जाच हो जावांगे। आओ प्यार सहित सारी संगत।

अनुसार गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने तरस कीता। अज आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी काका मनजोत सिंह संगा सपुत्र सरदार परमजीत सिंह संगा बीबी मनजीत कौर संगा अते बच्ची प्रीत कौर सपुत्री सरदार हरविंदर सिंह सैनी बीबी गुरदीप कौर सैनी गरीब नवाज इस सुभाग जोड़ी दे

अंत भुला आप जी ने ना चितारनिया खिमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी कृपा करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा अपना मेहरा भरिया हथ रखना ग्रिस्त धर्म दियां सारियां खुशियां झोली विच पाउनियां ग्रिस्त दियां जिम्मेवारियां नू निभाउण दे लई आप जी ने अपनी मत बुद्ध प्रदान करनी चढ़दी कला बख्शिश करके निवाजना दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना आपसी प्रेम प्यार इतफाक बना करके रखना रहमत करनी सुभाग जोड़ी नू गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ गुरसिख की जीवन अपने चरण कमलां दी प्रीत नाम दान इशनान बख्शिश करने सतगुरु जीओ कृपा करनी इस वक्त खुशियां मौके दोहां परिवारां वल्लों आप जीआं नूं सुंदर पोशाके पहनाए।